असे मेरा घूमना को कहीं वो मासे था मना को करूं रिका से मेरा घूमना को कामी हो रिके मरे मानु की सुन ले मेरा ब्रह्मा वाई या का गोली मले लावले ब्रह्मा वाई या का गोली मले लामीबा अम्मु इता मल्याकु ऐ इता नराचनाय ऐ इते गुलुआय ऐ तुम्हाय हो बजाय ऐ रोवा में कुआं जाय ऐ हले नरवानुं ऐ हले नरवामाय किरुए सीमा कवा पचागा कुरिया नगी वेदुयो मामनु वही लगा कि वो रिया नगी हुई है।